0: ये अनि नान चांग दिया को जे तो को कोस ने जो जे ए तो तो से सुन कुछ कुछ आए नांग बाप का ले खास कुछ कुछ
1: ओ जे तारे छो सिम बा
0: ना मन जो के चांग रसी दा
1: ना बाबा से दिका ये मैं सना क्या ले क्यू सा ना ओ दी मिल खबा दिन यो सा खाने ना बाबा सगा जे नेम जी तो जगा जवाब में तो